0: কিছু বর মেরাগ মানু পর্দই না ডর ভর সদবাদ গরিন রানী শকুন্তলালে নমান সংকাতিনি দূর হুনালে তিনরাই ভগত রানীর পুত্র ইহুন
1: শ্রী নারায়ণ ব্রহ্ম কা চরণমা ভক্তি ধরম সর্বদা আপনো বৈদিক ধর্ম কর্ম কুলকো আচার পালো সদা ভন্ছন জন্মনুলাই সূতক মরেকালাই জুঠো ভনি জুঠো সূতক শাস্ত্রকা নিয়মলে হো বার্নু পর্নে পনি গর্বাশ্রবা ভয়ে তুহে উনি ছমৈনাসম্ম আমা কন যতি মাস ছ উত্তি রোজ নছুনু আশোচ বার্নু ভন পৈলা পুত্র ভয়ে ত বিশ দিনমা ছোরি ভয়ে চিসমা সুৎকেরি কন কার্য গর্ন অধিকার দেখিন্ছ শাস্ত্রাদিমা আমা সৌতিনে মাতুলে যব সচৈল অস্নান গর্ছন অনি ছোয়ে দোষ হুদৈন নাল রহদৈ সুৎকেরিলাই পনি নান্দী শ্রাদ্ধ র জাত কর্ম গর্নু দানাদি হেরু দিনু নাল ছেদনকো ছোর ঘড়িকো অবধি বিচারি লিনু কর্মই মাত্র নগর্নু সূতক বিষয়ে পর্দৈন ছান্নু অরু মালা চন্দন ঢোগ ভেটি কপড়া খানে পিনে চিজহরু ছৈটৌকা দিন পূজনাদি শিশুকো নিম্তো এটি সমজমা দোষী কই হুঁদিন ব্রাহ্মণ পিতা আলিনে দিনে ধর্মমা পুস্তা সাত সাত শ্রাব গরিব একাইশ পুস্তক পয়লা সাত সপিঞ্জি ভাই বুঝনু দোস্রো সমান দক তেস্রো সাত সগোত্রী জানু সবমা তিন দিন একই দিন জুঠো সূতক বার্নু এই ক্রমলে রাম রাম অরুমা ভন।
2: योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी सम्बन्धी कालिङचोक गाउँपालिकाको सूचना। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 नियम 30(1) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा 7 दिन अगावै भुक्तानी दिई निकास र खर्चको लेखा अध्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विशेष गरी असार महिनामा भुक्तानीको चाप बढ़ी भई सर्भर डाउन हुने सिस्टम नचल्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने साथै कार्यालयले कर दाखिला गर्ने संघीय र प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदानहरू फिर्ता गर्नुपर्ने तथा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको हिसाब मिलान गरी तालुक निकायमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने भएकोले आर्थिक वर्ष 2082-83 कालिङचोक गाउँपालिका कार्यालयबाट भुक्तानी लिनुपर्ने मातहतका कार्यालयहरू शाखाहरू सम्पूर्ण व्यक्ति फर्म सप्लायर्स निर्माण व्यवसायी उपभोक्ता समिति लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले मिति 2083 साल असार 7 गते भित्र कागजातहरू पेश गरी भुक्तानी लिइसक्नुहुन यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। उक्त समय अवधि भित्र भुक्तानी नलिएमा यस कारणले जवाफदेही नहुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। कालिङचोक गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सुनखानी दोलखा। हार्दिक निमन्त्रणा
3: लासो फ्याफुल्ला टसिदेले नमस्कार सेवा जोरले जुदुलोपा स्याउदाई बौद्ध धर्म मायन त्रिपिटकको आस्थामा बस्नु भएको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई यो सूचना गरिएको छ। यही 2083 जेठ 3 गतेदेखि सागधव महिना शुरू भएकोले एक महिना चाहिँ कुनै पनि हत्या हिंसा नगरी मांसाहारीलाई छोडेर सहकारी बन्नुभयो भने अत्यन्तै उत्तम हुनेछ। अरू बेला यहाँहरूले त्यस्ता चिजहरू मासुहरू खाना छोड्न नसके पनि यो एक महिनालाई छोडिदिनु भयो भने शास्त्रमा उल्लेखित भए अनुसार कल्प कल्पका पाप कट्टा हुनेछ भनी शास्त्रमा उल्लेखित छ। साथै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू यस सागधव महिनामा न्यूनी व्रत बस्ने चलन भएकोले इच्छुक हुने धर्मावलम्बी मित्रहरू उपस्थित भई न्यूने व्रत बस्न आउनु सक्नुहुनेछ।
2: न्यूने व्रत बस्ने मिति 2083 साल जेठ 16 गते शुरू भई 18 गते सम्पन्न हुने। स्थान भीमेश्वर नगरपालिका 6 चोथाङ महादेव खोला सिद्धे छोइलिङ गुम्बा डुक्पा रेम्पोछेको गुम्बा। खानाको निशुल्क व्यवस्था रहेको छ। न्यूने व्रत बस्ने बौद्ध धर्मलम्बीहरू जेठ 15 गते बेलुकासम्म आउनु पर्नेछ। ओढ्नेको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्नेछ। आयोजक जिल्ला लामा सन्तोलाखा, गुम्बा अध्यक्ष छेवाङ लामा र गुम्बामा रहनु भएका आनीहरू। थप जानकारीको लागि अध्यक्ष ढुक्पा लामा सम्पर्क नम्बर 9840 92 67 1

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सांदल के बन में नाचने छन मजूरा।
1: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: अनुरोधक दीप जनपन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पत्री प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 मे 25 तारीख ज्येष्ठ 11 गते सोमबार 9 मे तिथि अब स्तुति गरौं।

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारसलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दस जोदायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानकी सुनि र पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओ जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपिश तिम्लोक उजागर, राम देवता अदुल दबल धाम, अञ्जनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ बरजाओ ध्वज विराजई, कांदे मुझे जन साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगा दरवाया, भीम रूप दर असुर संहारी, रामचंद्र के काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज बदन तुम्हारा जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्री भई किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मधु फल जानु, प्रभु मंदिर का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुबारे तुम रखवारे, वतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिता से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम्हें साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग पड़ताल तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रघुपति के दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिर सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख हुई, जो ये पड़े हनुमान चाइसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, किजनाथ हृदय मोहडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसवंश रूप शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा। जय हनुमान, जय बजरंग बली।